0: All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुईं रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bi-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming bi-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bi-polls could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
10: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
11: छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया
10: गया तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
11: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का
0: Police, however, say that the hair patch alone may not have been the motive for the murder. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
12: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
13: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
14: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
15: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
14: जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस जाए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC-monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein. जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ, लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, गजा मेल हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
10: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
11: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
10: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
12: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
10: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
13: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
14: छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
13: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
14: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा पसंद था चल कर देते थे ना
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
15: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
16: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
17: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
17: से जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
18: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
17: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्जवल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple's CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। गजा में हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
10: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
11: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
10: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
12: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
10: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
13: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
14: छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
13: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
14: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
15: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
16: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
17: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
17: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
18: सर एसआईटी की मांग की आपने इस पर
17: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: The Maharashtra government has also appointed 2611 prosecutors Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists, day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: उसके लिए दोषी हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है. मूलतः वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनका ट्रस्ट से संबंध है. चढ़ावे के बारे में भी जानते थे, वहां के आर्थिक हालात के बारे में जानते थे. तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो सही मानों में गुनहगार थे. नैतिकता का तकाजा नहीं है, ये शहीद होना चाहते हैं, लेकिन शहीद होने जैसी स्थिति नहीं है. ये तो विशुद्ध रूप से करप्शन में शामिल है और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है.
3: जो आज लोग बोल रहे हैं पक्ष में, वो केवल और केवल उनकी चापलूसी कर रहे हैं. जमपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया. अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ. भाई मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं. चंपत राय चोर है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं. लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है. निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं.

0: Remember, they have donated as per their faith, their capability, and especially faith in Lord Ram, faith in the Ram Temple, but a bigger faith in people associated with the Temple Trust to manage these donations. Has that trust been broken now? Chief Minister Yogi Adityanath has assured swift justice. So I'm going to go beyond political face-off that we have been witnessing. This evening on To The Point, I want to discuss what the sadhus, the seers, the religious gurus who have been closely associated with the movement or the temple have to say. We'll be joined by that panel in just a short while. I'm Pooja Shali. First, the headlines. And also, we're going to go across to joining us right now. First, I want to introduce already, Acharya Pramod Krishnam is joining me. Now, this is important for Acharya ji because Sri Kalki Dham is where Acharya ji is associated with and has been, of course, speaking on the Ram Temple movement and issues. We'll be also joined by Mahant Naval Kishore Das ji Maharaj, spokesperson from the Akhada Parishad. Swami Chakrapani Maharaj is joining us. He's the national president of the Hindu Mahasabha. Computer Baba, as he's called, Mahamandaleshwar Digambar Akhada as well. Mahant Sitaram Das, spokesperson from the Nirmohi Akhada, joining me. I want to first start with you, Acharya ji, and English, Hindi, jaisa aapko comfortable ho aap kahe. Simple sawal jo aaj uth raha hai, wo yahi hai ki kitna celebration hua tha, ek kahin na kahin kehte hai, jaise tripti hui thi ki finally generations ne jo ladai ladi, wo aaj puri hui aur mandir bana. Jab ye koi sunta hai ki hame pata bhi nahi abhi kitne donations ki yahan baat ho rahi hai, lekin agar ye charge bhi aata hai ki shayad kuch hera feri hui hai, to ye to direct जो हिंदू सेंटिमेंट है, हिंदू आस्था है, उस पे अटैक है ये.
1: देखिए पूजा जी, जहाँ तक सवाल है कि भगवान श्री राम का जन्मभूमि का जो मंदिर है, हमारी आस्था का आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एवरीबडी नोज और हम लोग मानते हैं. और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हुआ वो सैकड़ों सालों के संघर्ष का फल था. इसमें बहुत बलिदान हुए, इसमें बड़ा त्याग तपस्या सब कुछ. अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ चोरी हो गई. और चोरी अगर किसी बिजनेस हाउसेस में हो जाए, किसी ऑफिस में हो जाए, मतलब राम मंदिर में चोरी है ना, किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है. तो ये सिर्फ सिंपली अपराध नहीं है, ये पाप है और महापाप है. अब सवाल उठता है, इसमें तीन बिंदु हैं. पहला ये है कि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए काम करना है. तो जो ट्रस्ट है, और वो बहुत बहुत बड़े अच्छे विद्वान लोगों का ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी भक्ति पर, उनके समर्पण पर और उनकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं है. बट ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है. तो उन करोड़ों लोगों को भरोसा है.
0: बट ट्रस्ट पे क्यों नहीं सवाल है? ट्रस्ट पे भी बिल्कुल सवाल हो गए.
1: आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट कि उनकी निष्ठा पे हम अभी कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, बट उस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए और इस करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, एक दो नहीं पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए. क्योंकि अगर हम इसकी जांच कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होगा कि साहब जांच बैठाई किसने, जांच की किसने और जांच की किसकी. तो उसमें जो निष्पक्षता का जो मैसेज है वो नहीं जाएगा. और राम मंदिर का मसला जो है पूजा जी, राम मंदिर का वो विषय है कि वो भगवान राम जिन्होंने एक सवाल खड़ा करने पर अपनी प्रिय जानकी को भी अग्नि परीक्षा देना स्वीकार कर लिया था. तो उस भगवान के मंदिर में यदि लूट हुई है, चोरी हुई है, तो एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं. आखिर कौन
0: वो
1: है?
0: नेक्सस ही तो समझना है.
1: तो ये पाप है, ये पाप है. और मैं मानता हूं कि इस पाप का खुलासा होना बहुत जरूरी.
0: आचार्य जी, वर्ल्ड ओवर वी आर बीइंग वॉच्ड राइट नाउ बिकॉज इट वाज सच अ बिग न्यूज. रिमेंबर व्हेन द टेंपल वाज इनॉग्रेटेड, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देयर वर डोनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. यू डोंट वांट द वर्ल्ड टू थिंक दैट देयर कुड हैव बीन मिसहैंडलिंग ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंडिंग लाइक दैट. एंड दीज आर चार्जेस राइट नाउ. आई रिटरेट, दीज आर चार्जेस राइट नाउ एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप नेशनल प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के, क्या आप खुश हैं इस बात से? आर यू कन्विंस्ड दैट चंपत राय, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हैज रिजाइंड, अनिल मिश्रा हैज रिजाइंड, इज दैट गुड इनफ फॉर यू राइट नाउ? क्या आपको लगता है और भी इसमें कुछ होना चाहिए?
2: नहीं देखिए, रिजाइन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यह तो बीच की बातें हैं कि रिजाइन दे दो ताकि वहां की जो पवित्रता है, वहां की जो सुचिता है वो बनी रहे और निष्पक्षता से जांच हो। रिजाइन मूल उद्देश्य नहीं है, और मात्र किसी के आरोप लगने से भी हम ये नहीं कहते थे तुम चोर हो, वो तो जांच होगी। तो मूल विषय यह है कि आखिर इस ट्रस्ट के रहते हुए भी इस तरह से ऐसी अनियमितता कैसे हुई कि मात्र 45 दिन में सैकड़ों उसमें बता रहे थे कि उसमें वीडियो ऐसे आए हैं जो चोरी के सबूत मिले, उसके पहले वाले तो कट गए हैं। आप जरा बताइए इनको थोड़ा भी जो चोरी करने वाले थे क्या इतने दुस्साहसी थे? जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भगवा दारी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं शक्ति के रूप में एक सख्त मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो राम भक्त हैं, जब से वो आए हैं अयोध्या जी में कितना विकास हुआ है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जाते हैं तो दंडवत करते हैं राम जी के सामने, हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और वहां पे ये इतनी बड़ी घोटाले हो रहे थे, इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, और पूरे हिंदू समाज जो पूरे देश और विश्व के राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीना से वो दे करके मंदिर बनवाया कि एक भव्य मंदिर, एक राम राज्य की स्थापना होगी मंदिर के ऊपर। आपको याद होगा स्थापना पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक संबोधन हुआ था, और उन्होंने एक नए युग की कल्पना की थी, नए राम राज्य की कल्पना की थी। आज वहां पे चोरी की कभी कोई सोच नहीं सकता, साधारण नहीं सोच सकता। तो कहीं ना कहीं उन सभी जो परम उद्देश्य थे उसको पलीता लगाने का काम किया है।
0: आचार्य जी आई थिंक ही इज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी टू लिसन टू व्हाट आवर गेस्ट्स आर सेइंग, सो द स्टूडियो आर हियर फॉर हिम एज वेल। महंत नवल किशोर दास जी महाराज इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, ही इज फ्रॉम द अखाड़ा परिषद। आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि कम से कम रिजाइन किया, 8 लोगों को तो पकड़ लिया गया है, कोर्ट ले जाया गया उनको, वो जेल भेजे जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो एक्शन लिया गया क्या आप मानते हैं ये अभी काफी है और कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या और आपकी मांगे हैं?
3: हमको पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश के प्रधानमंत्री जी उनकी राम भक्ति में, उनके समर्पण में किसी को भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग 8 लोग अरेस्ट हुए हैं तो प्यादे हैं, किसके निर्देशन में वो काम कर रहे थे, इतना हिम्मत उनका कैसे हो गया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में वहां चोरी जैसा महापाप करने का दुस्साहस कैसे इनने कर लिया, और हमारे इतने अच्छी दृष्टि वाले लोग जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया, तो व्यक्ति के चेहरे को देख करके चरित्र पहचान लेते हैं, उन लोगों को क्यों समझ में नहीं आया कि उनको नीचे काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? फिर एक ही कड़ी को जोड़ी गई, एक व्यक्ति वही ट्रस्ट का सदस्य है, उसका रिश्तेदार, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि भक्ति हो रही थी, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि प्रबंधन हो रहा था। इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, इसलिए पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए सिरे से सृजन किया जाए, और नए सिरे से भी हम चाहेंगे कि उसमें संतों ने गांव-गांव नगर-नगर जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, चाहे रामशिला पूजन हो, राम ज्योति हो, गंगा पूजा हो, भारत माता की यात्रा हो, संत यात्रा हो, महात्माओं ने संतों ने अपने मठ मंदिर छोड़ करके जागरण किया था, आज कहीं ना कहीं पूरे जागरण को, पूरे परिश्रम को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं व्यथित है, परेशान है, आज साधु समाज कहीं ना कहीं अपने को है कि हमने किसके लिए किया था, क्यों किया था। इसलिए उस ट्रस्ट में अच्छे संतों की जो समर्पित भाव से काम करते उनकी सहभागिता हो, उनके दिशा
0: अच्छा, आप चाहते हैं जो ट्रस्ट है उसमें भी संत समाज से इंक्लूजन रहे। और महंत सीताराम दास जी आप स्पोक्सपर्सन है निर्मोही अखाड़ा का, हाँ, और निर्मोही अखाड़ा का तो रोल काफी मशहूर रहा है, चाहे वो मूवमेंट हो या मंदिर के हिसाब से भी, लेकिन इसमें जब बात आती है जिस तरह का ये चार्ज आ रहा है और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, तो अभी डिटेल्स ये भी नहीं हमें पता है कि कितने डोनेशन, कितने अमाउंट पे ये इश्यू आ रहा है, तो जब आप सुनते हैं कि कम से कम एकदम एक्शन लिया गया है, पहला सेंटिमेंट क्या है? क्या ये हिंदू आस्था पे अटैक है या हिंदू आस्था के नाम पे जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिनमें इतनी भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि वो राम मंदिर में बैठकर ये महापाप कर रहे हैं, उनको किस तरह की पनिशमेंट मिली जाए, हिंदू आस्था पर किस तरह का ये अटैक है?
3: देखिए पूजा जी, एक आपने जो शुरुआत की है मैं उससे प्रारंभ करूंगा। आपने कहा कि निर्मोही अखाड़े का रोल बहुत बड़ा रहा है, तो 23 मार्च 1528 को जब मीरबाकी आया था तो वहां पर निर्मोही अखाड़ा ही था। और उसके बाद में 1866 में जब हमारे महंत खेमदास जी महाराज ने मुकदमा किया और मुकदमा जीते, उसके बाद में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। 1885 में हमारे महंत रघुवर दास जी महाराज ने मुकदमा किया और 1949 में जब रामलला वहां पर प्रकट किए गए ऐसा कहते हैं, तो वहां पर 1949 में रामलला प्रकट नहीं किए, 1941 रामलला तो पहले से बैठे हुए थे, 1941 से निर्मोही अखाड़ा वहां पर सेवा पूजा पहले से ही कर रहा था। और उसके बाद में 1959 में पहला पक्षकार बन करके निर्मोही अखाड़ा गया।
0: आप मुझे बताइए, क्या आप, क्या अभी जो एक्शन लिया जा रहा है उससे आप कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ये बिट्रेल है?
3: ये एक्शन नहीं है, ये दिखावा है और ये एक षड्यंत्र है, ये एक्शन नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक्शन करना होता तो मैं एक बार बार बार कह रहा हूँ कि भरत तिवारी जो बिहार में बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जजमेंट के गोली मार दी गई, और जो व्यक्ति अभी कह रहे थे प्रमोद कृष्णन जी कि खुलासा होना चाहिए, खुलासा तो हो चुका है, अब तो इनको सजा मिलने की जरूरत है। एसआईटी
0: आचार्य जी, आप मानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, क्या आई वॉश है? क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता था जो आई वॉश नहीं हो? जी जी हाँ, आप चाह रहे गिरफ्तार करना चाहिए, किसको? कड़ा तो है, गिरफ्तारी तो हुई है 8 लोगों की,
3: कड़ी सजा। और ये जो अभी गिरफ्तारी भई है ये दिखावा है, वही चोर, वही एफआईआर करने वाले, वही गिरफ्तार करने वाले, वही चोरी करने वाले, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। देश देख रहा है, राष्ट्र देख रहा है, राम भक्त देख रहे हैं, ये चलेगा नहीं।
0: आचार्य जी बताइए, और किस, और ये आप क्यों ये जो है इसको आप काउंटर कर रहे हैं, कि मतलब किस तरह से इसको देखेंगे आप?
1: और देखिए पूजा जी, बात ये है कि एक चोरी एक दिन में हो जाए तब तो समझ में आती है, लेकिन निरंतर वो लूट हो रही थी निरंतर, तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। और कोई भी, ये जो 8 पकड़े गए हैं तो अब ये बताएंगे कि और कौन कौन है।
0: हाँ।
1: तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अभी 8 की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे किसकी गिरफ्तारी होगी वो ये बताएंगे, क्योंकि पहली बात है चोरी करना, दूसरा है चोरी कराना, तीसरी बात है चोरी हो रही है लेकिन हम देखते रहे, तो तीनों जो बातें हैं इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का, जो लोग अपनी नेक कमाई में से वहां पैसा जिन्होंने दिया है उनके दिल पे कुठाराघात हुआ है, वो सब के सब दुखी हैं, हर घर में इसकी चर्चा है, मगर क्योंकि ट्रस्ट की जो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करना उचित नहीं होगा, और पूरे के पूरे ट्रस्ट को, अपना ट्रस्ट कायम रखना होगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं
0: हाँ।
1: कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को हाँ। सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए
0: कुछ कहना चाह रहे, बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या ये ट्रस्ट की बात है पूरी? अब आप बताइए नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर दास जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो राम भक्तों की श्रद्धा का दोहन हुआ है इसमें एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, और जब तक एक एक अपराधी दंड का भागी नहीं बनता, कठोर दंड नहीं मिलता, तब तक राम भक्तों को प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो समर्पण करता है, 1 रुपए भी समर्पण करता है, उसको लगता है कि भगवान की सेवा में मेरा दिया हुआ निधि जाएगी, उस निधि को व्यक्तिगत उपयोग करना या उससे चोरी करना इतना बड़ा अपराध। राम राज्य में, राम मंदिर में, राम
0: महान सीताराम जी, जो आप कह रहे हैं, जैसे जी आप कह रहे हैं कम से कम 8 लोग हुए हैं, वही तो आगे बताएंगे, अगर शुरुआत ही नहीं होगी,
3: चोरी की है,
0: जो शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे कैसे बता देगा?
3: ऐसा ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा नहीं है, जो मुख्य आरोपी हैं पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
0: पहले कौन है मुख्य आरोपी आपके हिसाब से, कौन है मुख्य आरोपी?
3: राय को गिरफ्तार करना चाहिए, और वो भी एसआईटी गिरफ्तार करती, जो वहाँ की जो पुलिस है जो अभी गिरफ्तार किया है और जिन्होंने एफआईआर कराई है, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने ही एफआईआर कराई है और ट्रस्ट के लोग ही चोरी कर रहे हैं, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है, क्योंकि गिरफ्तार करने वाली संस्था एसआईटी होती यदि, तो हमें भी लगता कि हाँ कुछ कार्य हो रहा है।
0: चक्रपाणी महाराज जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ तो चंपत राय की गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या आप भी अग्री करते हैं उससे?
2: देखिए, मूल विषय गिरफ्तारी उद्देश्य नहीं, मूल विषय ये चोरों का पर्दाफाश होना जरूरी है। हाँ। और कोई भी हो, जितने हो सकता है और लोग भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये ना तो सबके ही वो होना चाहिए, सबको सजा मिले। लेकिन एक बात है कि जिस प्रकार से चोरों ने समझा, भगवान राम के शरण में रह करके सीसी कैमरे हटा दिया जैसे सुनने में आया, और मात्र 45 दिन का उसमें सैकड़ों बार उसमें वीडियो आया चोरी करते हुए, लेकिन ये भूल गए कि ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं, उनके सीसी कैमरा हमेशा चालू होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा कुछ सोचते भी हो गलत वो भी लिखा जाता है। उनके यहाँ सजा तो मिलनी ही मिलनी है। अगर यहाँ तुम किसी तरह से यहाँ भी नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ योगी जी और मोदी जी हैं, उन तो सजा जरूर दिलवाएंगे, और ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज है, और निश्चित रूप से वो छोड़ने वाले नहीं है, सजा तो होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कलंक देने का काम किया है, जो हिंदुओं को एक घाव देने का काम किया है, वो हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा।
0: और आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं,
1: देखिए देखिए पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे सीताराम जीदास जी महाराज और नवल किशोर दास जी को मैं सुन रहा हूं। हम किसी भी निर्दोष को सूली पे चढ़ाने के पक्ष में नहीं, पूरे के पूरे ट्रस्ट को हम ये कहें कि ये ही बेईमान है, चोर है, ये मैं नहीं कहना, मैं ये नहीं चाहता हूं।
0: तो अगला ट्रस्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो चाहे वो संत समाज से हो, क्या वहां प्रॉब्लम नहीं हो सकती?
1: ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। मेरा कहना ये है कि पहले तो ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। फिर जांच के अंदर जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि ये लोग बताएंगे कि क्या इनको संरक्षण कौन देता था, तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे और हम इनको जेल भेज देते हैं, ठीक है, तो फिर जांच आगे बढ़ेगी कैसे? हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए या उन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ये अपराध को संरक्षण दिया।
0: अगर मैं सही थी महंत सीताराम जी, आप ही कह रहे थे कि चंपत राय को अरेस्ट होना चाहिए।
3: अरे आचार्य जी कैसी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एसआईटी में प्रमोद कृष्णम जी ही बैठे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है। ऐसी प्रक्रिया समझा रहे हो, क्यों? उसका कारण है, आचार्य जी आपका दोस्त नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो आप खुल करके वो बात नहीं कह सकते ना, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, समस्या ये है। इसलिए
1: ये विषय नहीं है सीताराम जी, आई एम सॉरी टू से सीताराम जी, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करिए जो जिनका आपको पता नहीं है। पहली बात मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, सुनिए पहली बात, एक मिनट सीताराम दास जी प्लीज, बहन जी मेरी बात सुनिए, पहली बात भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूं, नंबर
0: एक,
1: ठीक है, आई एम सॉरी टू से, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक सेकंड, आप अपने किसी व्यक्तिगत दुराग्रह की वजह से पूरे के पूरे ट्रस्ट को बेईमान ठहराएं, मैं उस पक्ष में नहीं हूं, आप अपनी बात करिएगा, मैंने अपनी बात करी है, मैं ये चाहता हूं कि पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा देना चाहिए, मैंने साफ बात की, तो मैंने तो कोई पार्शियलिटी की बात नहीं की, मैंने किसी के पक्ष में बात नहीं की। अब आप किसी भी दुराग्रह से ग्रस्त होकर के मुझ पे हमला करें, कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ जो हुआ है उसकी तह तक जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवाद पार्टी, ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय हो सकता है।
3: नहीं चंपत राय भैया, प्रमोद कृष्णम जी, आप दरवाजे से घुसोगे दीवार फांदोगे, दरवाजा चंपत राय भाई।
1: आप ये कह रहे हैं, मैंने उसका विरोध कहां किया? सीताराम दास जी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने का, आप कह सकते हैं कि ये अपराधी है ये नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है।
3: आचार्य जी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सारी चीजें सामने आ, खुलासा क्या आप बार बार आप लोग कह रहे हो खुलासा होना चाहिए, खुलासा
1: अगर आपको मालूम है कि सारी चीज सामने आ चुकी हैं, तो आप बताइए कि चंपत राय जी को अरेस्ट करने के बाद में, चंपत राय जी को जेल भेजने के बाद में उनके साथ और कौन कौन थे वो भी नाम बता दीजिएगा।
3: हम तो बता रहे हैं ना, चंपत राय जी के साथ साथ में अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और उसके साथ में पूरा ट्रस्ट, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, आपने उनको तो गिरफ्तार किया नहीं, छोटे
1: कोषाध्यक्ष।
0: लेकिन कोई चार्ज तो आएगा ना, जब वो चार्ज कहां से आ रहा है? आप जिसके बारे में कह रहे हैं अरेस्ट होना चाहिए, सब अरेस्ट हो जाने चाहिए, कहीं तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं तो नाम आए, ऐसे ही तो किसी को उठा के जेल में नहीं डाल दिया जा सकता है ना। महंत सीताराम जी,
3: पूजा जी मैं पूछ रहा हूँ, भरत तिवारी का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? भरत तिवारी की को गोली मार दी गई,
4: अब वो बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर चलावे ना इनके टिन्नू मिन्नू से सबके, चंपत राय और अनिल मिश्रा के प्रति इनके घरों में चलाए ना बुलडोजर।
1: सीताराम दास जी बड़े सम्मानित संत हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं
0: बुलडोजर वाली,
1: लेकिन लेकिन मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह भरत तिवारी का एनकाउंटर है, मैं उस एनकाउंटर को एनकाउंटर नहीं मान रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि वो हत्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, बट वो एक अलग विषय है। मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप
4: इस
1: एक तो आप अपनी बात कह जाते सुनना नहीं चाहते, महंत जी सुना भी कीजिएगा, कोई क्या कह रहा सुन तो लीजिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप सुन तो लीजिएगा, आप सुनना नहीं चाहते, आप ये कहना चाहते हो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं इन्हें एनकाउंटर कर दिया जाए।
4: मैं नहीं बोलता,
1: आप ये
0: चार्जेस आए नहीं है महंत सीताराम जी, आप निर्मोही अखाड़ा से हैं, हम ऐसे चार्जेस के बिना ऐसी बात नहीं कर सकते, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाएगा।
1: दोष किसका है किसका नहीं है इसका
0: स्वामी चक्रपाणि महाराज जी आप हमें बताइए,
1: टीम करेगी,
0: यहाँ देखिए कैसे समाज में जो संत समाज है उसी में एक तरह से डिबेट शुरू हो गया है, तो किस तरह से आगे जाया जाए ताकि जो जो भी रहे हैं जुड़े रहे हैं मंदिर से आस्था से किस तरह से आगे जाया जाए, क्या इसमें सीधा तौर पे ट्रस्ट पे ही मुद्दा आता है, सारे ट्रस्ट को रिजाइन कर देना चाहिए, पर अगला ट्रस्ट कैसे बनेगा वो भी तो फिर उसमें भी तो एक प्रोसीजर और प्रोटोकॉल देखना चाहिए।
2: नहीं देखिए संत जो भी हैं सबके अंदर पीड़ा है, चाहे हमारे निर्मोही अखाड़े के हमारे पूज्य संत हैं या हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, सब यही चाहता है कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिले। सवाल इस बात का है, आचार्य जी भी वही कह रहे हैं कि अगर जेल को ही जेल में तुरंत भेज दिया जाए तो भाई जांच किससे होगी, किससे जाके पूछा जाएगा, तो ये तो ठीक है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है इसमें जो जो सभी को जिस प्रकार से जो कष्ट हुआ है, जो किसी प्रकार से कहीं ना कहीं भावना आहत हुई है, कहीं ना कहीं लोगों की भावना को ठगा गया है, तो उस ठगने में निश्चित रूप से ट्रस्ट में जो है वो लोग जिम्मेदार हैं, और इसको कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए। आप सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ डिबेट से नहीं होगा, निश्चित रूप से इस पे हमें पूरा विश्वास है कि एजेंसी कार्य करेगी। और जैसे अभी देखिए ये पता ही नहीं चल रहा था कि एफआईआर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो टिन्नू मिन्नू जो भी नाम आ रहे हैं 6-7-8, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आकर के वो इतने हैसियत वाले थे कि बोरी में नोट लादा और निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं था, जरूर किसी का सह होगा, जरूर किसी का साथ होगा, जरूर किसी ने उसको पीछे से वो किया होगा कि चिंता ना करो मैं हूं, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष है उनका बयान है स्पष्ट, उन्होंने कहा है कि कोई यहां व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसे आता था और जाता था, किसी प्रकार की कोई किसी की चेकिंग नहीं थी, तो जब इस तरह की बात
0: और कैसे किसी टिन्नू यादव जैसे एसोसिएट को इतना फ्री एक्सेस था टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, वो कौन से बड़े ऑफिशियल थे जिनको और उनके साथ कुछ और इतनी आसानी से कैसे
2: बैठे हुए लोग।
0: नवल किशोर दास जी महाराज आप अखाड़ा परिषद से हैं, मैं आपसे क्योंकि आप थोड़ी देर नहीं थे तो आखिरी कमेंट्स में, तो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता है कि कितने का जो हेरा फेरी मानी जा रही है वो हुई है, तो कैसे हिंदू समाज को और देश भर वर्ल्ड ओवर कैसे एक अश्योरेंस जाएगा कि जो भी अब इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से हो, सामने सामने हो, और मुख्यमंत्री ने क्योंकि ये आश्वासन दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा इस हिसाब से।
5: मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूँ भंग ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन प्रबंधन किसी अन्य लोगों को दिया जाए, और जब तक पूरी जांच ठीक से नहीं हो जाती वर्तमान ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस भूमिका से अलग रखा जाए, इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सकें और पूरा निर्णय हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब लोग पदेन रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पूरी जांच ठीक से हो पाएगी, इसलिए सभी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने आप को अलग कर लें और कुछ प्रबंधन में अन्य लोगों को जोड़ दिया जाए तत्कालीन, बाकी बाद में जो निर्णय करना हो करें, पर तत्कालीन कोई दूसरी व्यवस्था की जाए प्रबंधन में, और इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सके और पता लगे कि किनके संरक्षण में यह हो रहा था। मैं पूर्ण सहमत हूँ महाराज जी से, चक्रपाणि जी से, कि बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहमति, उनके बर्दस्त के बिना इतना बड़ा गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए वो कौन है वो जांच होना चाहिए उसकी, और उसको जांच को उसे कान पकड़ करके जो भी उसको कठोर से किसी दंड मिले दंड मिल जाए, तो आम जो श्रद्धालु हैं अन्य राम भक्तों में लगेगा कि जांच ठीक हुई और अपराधी को दंड मिल रहा है।
0: आप सबने अपनी बात रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए आस्था पे एक बने रहना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि अब आगे ऐसा ना हो, ये किस तरह से सरकार इंश्योर करेगी।
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming.

0: And we're getting some breaking news. This is regarding Ketan Agarwal's murder probe, which is now intensifying. And a scene recreation is also underway at the Logar Fort. Accused Sia has been taken to Logar Fort. And Prime Minister Modi is now addressing 135th Mann Ki Baat. Let's listen in.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन छह महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेट

इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट बीजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर

0: And now shifting focus to Ketan Agarwal murder case. CIA is at Lohgarh Fort for the crime scene recreation. So recreation is being done today. Cops recreate the sequence of Ketan's murder. Mannequin has been used during the crime reconstruction at the Lohgarh Fort. And the cops reenact the entire sequence, death push from the fort edge. And CI is present at the crime reconstruction spot. And remember, CI and Chetan both rehearsed the perfect push of death. They also worked on the intensity that needs to be there behind the push. And Mannequin doubles up as Ketan's body at the Lohgarh Fort today, where the recreation is now underway with CI, accused CI, present over there. She has been taken to the spot, the crime spot, and the dummy is used for relook at each step of murder. So the cops are essentially verifying whatever claims have been made by Sia during the investigation, and that is why she has been taken to the crime spot. Chetan Chaudhary, though, is not present. It's only Sia who has been taken. Maybe in the coming days, Chetan will also be taken to the crime spot for the recreation. Maybe then the cops will be matching the statements and piece the information together. But today, only Sia has been taken for the recreation of the crime.
1: लोहगढ़ किले के यहाँ अभी मौजूद है, जहाँ डीवाईएसपी यहाँ मौजूद है। सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
2: आज सीआई ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हुआ था वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
1: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
2: सीआई थी,
1: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना है हमें, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
2: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, उसी रिक्रिएशन हमने किया हुआ।
1: तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो गया उसका, अब उनका एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या पुश एग्जैक्टली किसने किया था, चेतन ने किया था या सिया ने?
2: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रियल सर की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
2: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
1: सर, कितने बजे, एक लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे लाया गया था, कितने देर तक
2: लेके आए थे? अभी खत्म हुआ है।
1: तो पे डीवाईएसपी थे यहाँ के, सीन रिक्रिएशन जा वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं, जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने, दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था।
0: So the recreation is now underway. Accused Sia has been taken to Lohgarh Fort, the crime spot, and the recreation is now underway using a dummy as

0: institutions. Has that trust been broken now? Chief Minister Yogi Adityanath has assured swift justice. So I'm going to go beyond political face-off that we have been witnessing. This evening on To The Point, I want to discuss what the sadhus, the seers, the religious gurus who have been closely associated with the movement or the temple have to say. We'll be joined by that panel in just a short while. I'm Pooja Shali. First, the headlines. And also, we're going to go across to joining us right now. First, I want to introduce already, Acharya Pramod Krishnam is joining me. Now, this is important for Acharya ji because Sri Kalki Dham is where Acharya ji is associated with and has been, of course, speaking on the Ram Temple movement and issues. We'll be also joined by Mahant Naval Kishore Das ji Maharaj, spokesperson from the Akhada Parishad. Swami Chakrapani Maharaj is joining us. He's the national president of the Hindu Mahasabha. Computer Baba, as he's called, Mahamandaleshwar Digambar Akhada as well. Mahant Sita Ram Das, spokesperson from the Nirmohi Akhada, joining me. I want to first start with you, Acharya ji, and English, Hindi, jaisa aapko comfortable ho, aap kahein. Simple sawal jo aaj uth raha hai, wo yahi hai ki kitna celebration hua tha, ek kahin na kahin kehte hai, jaise tripti hui thi ki finally generations ne jo ladai ladi, wo aaj puri hui aur mandir bana. Jab ye koi sunta hai ki hame pata bhi nahi abhi kitne donations ki yahan baat ho rahi hai, lekin agar ye charge bhi aata hai ki shayad kuch hera feri hui hai, to ye to direct जो हिंदू सेंटिमेंट है, हिंदू आस्था है, उस पे अटैक है ये.
1: और देखिए पूजा जी, जहाँ तक सवाल है कि भगवान श्री राम का जन्मभूमि का जो मंदिर है, हमारी आस्था का आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एवरीबडी नोज और हम लोग मानते हैं. और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हुआ वो सैकड़ों सालों के संघर्ष का फल था. इसमें बहुत बलिदान हुए, इसमें बड़ा त्याग तपस्या सब कुछ. अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ चोरी हो गई. और चोरी अगर किसी बिजनेस हाउसेस में हो जाए, किसी ऑफिस में हो जाए, मतलब राम मंदिर में चोरी है ना, किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है. तो ये सिर्फ सिंपली अपराध नहीं है, ये पाप है और महापाप है. अब सवाल उठता है, इसमें तीन बिंदु हैं. पहला ये है कि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए काम करना है. तो जो ट्रस्ट है, और वो बहुत बहुत बड़े अच्छे विद्वान लोगों का ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी भक्ति पर, उनके समर्पण पर और उनकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं है. बट ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है. तो उन करोड़ों लोगों को भरोसा है.
0: ट्रस्ट पे क्यों नहीं सवाल है? ट्रस्ट पे
1: कि उनकी निष्ठा पे हम अभी कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे. बट उस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए और इस करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, एक दो नहीं पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए. क्योंकि अगर हम इसकी जांच कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होगा कि साहब जांच बैठाई किसने, जांच की किसने और जांच की किसकी. तो उसमें जो निष्पक्षता का जो मैसेज है वो नहीं जाएगा. और राम मंदिर का मसला जो है पूजा जी, राम मंदिर का वो विषय है कि वो भगवान राम जिन्होंने एक सवाल खड़ा करने पर अपनी प्रिय जानकी को भी अग्नि परीक्षा देना स्वीकार कर लिया था. तो उस भगवान के मंदिर में यदि लूट हुई है, चोरी हुई है, तो एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं. आखिर कौन
0: वो
1: है?
0: नेक्सस ही तो समझना है.
1: तो ये पाप है, ये पाप है. और मैं मानता हूं कि इस पाप का खुलासा होना बहुत जरूरी.
0: आचार्य जी, वर्ल्ड ओवर वी आर बीइंग वॉच्ड राइट नाउ बिकॉज इट वाज सच अ बिग न्यूज. रिमेंबर व्हेन द टेंपल वाज इनॉग्रेटेड, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देयर वर डोनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. यू डोंट वांट द वर्ल्ड टू थिंक दैट देयर कुड हैव बीन मिसहैंडलिंग ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंडिंग लाइक दैट. एंड दीज आर चार्जेस राइट नाउ. आई रेटेड दीज आर चार्जेस राइट नाउ एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. स्वामी चक्रपाणि महाराज जी, आप नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के, क्या आप खुश हैं इस बात से? आर यू कन्विंस्ड दैट चंपत राय, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, has resigned, Anil Mishra has resigned. Is that good enough for you right now? क्या आपको लगता है और भी इसमें कुछ होना चाहिए?
2: नहीं देखिए, रिजाइन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यह तो बीच की बातें हैं कि रिजाइन दे दो ताकि वहां की जो पवित्रता है, वहां की जो सुचिता है वो बनी रहे और निष्पक्षता से जांच हो। रिजाइन मूल उद्देश्य नहीं है, और मात्र किसी के आरोप लगने से भी हम ये नहीं कहते थे तुम चोर हो, वो तो जांच होगी। तो मूल विषय ये है कि आखिर इस ट्रस्ट के रहते हुए भी इस तरह से ऐसी अनियमितता कैसे हुई कि मात्र 45 दिन में सैकड़ों उसमें बता रहे थे कि उसमें वीडियो ऐसे आए हैं जो चोरी के सबूत मिले, उसके पहले वाले तो कट गए हैं। आप जरा बताइए इनको थोड़ा भी जो चोरी करने वाले थे क्या इतने दुस्साहसी थे? जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भगवा दारी है योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं शक्ति के रूप में एक सख्त मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो राम भक्त है, जब से वो आए हैं अयोध्या जी में कितना विकास हुआ है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जाते हैं तो दंडवत करते हैं राम जी के सामने, हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और वहां पे ये इतनी बड़ी घोटाले हो रहे थे, इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, और पूरे हिंदू समाज जो पूरे देश और विश्व के राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीना से वो दे करके मंदिर बनवाया कि एक भव्य मंदिर, एक राम राज्य की स्थापना होगी मंदिर के ऊपर। आपको याद होगा स्थापना पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक संबोधन हुआ था, और उन्होंने एक नए युग की कल्पना की थी, नए राम राज्य की कल्पना की थी। आज वहां पे चोरी की कभी कोई सोच नहीं सकता, साधारण भक्त नहीं सोच सकता। तो कहीं ना कहीं उन सभी जो परम उद्देश्य थे उसको पलीता लगाने का काम किया है।
0: महंत नवल किशोर दास जी महाराज इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, ही इज फ्रॉम द अखाड़ा परिषद। आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि कम से कम रिजाइन किया, 8 लोगों को तो पकड़ लिया गया है, कोर्ट ले जाया गया उनको, वो जेल भेजे जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो एक्शन लिया गया क्या आप मानते हैं ये अभी काफी है, और कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या और आपकी मांगे हैं?
3: हमको पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं देश के प्रधानमंत्री जी उनकी राम भक्ति में, उनके समर्पण में किसी को भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग 8 लोग अरेस्ट हुए हैं तो प्यादे हैं, किसके निर्देशन में वो काम कर रहे थे, इतना हिम्मत उनका कैसे हो गया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में वहां चोरी जैसा महापाप करने का दुस्साहस कैसे इनने कर लिया, और हमारे इतने अच्छी दृष्टि वाले लोग जिन्होंने जीवन संघर्ष को समर्पित कर दिया, तो व्यक्ति के चेहरे को देख करके चरित्र पहचान लेते हैं, उन लोगों को क्यों समझ में नहीं आया कि उनको नीचे काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? फिर एक ही कड़ी को तोड़ी गई, जोड़ी गई, एक व्यक्ति वही ट्रस्ट का सदस्य है, उसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि भक्ति हो रही थी, वहां रिश्तेदारी हो रही थी कि प्रबंधन हो रहा था, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है ही, इसलिए पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए सिरे से सृजन किया जाए, और नए सिरे से भी हम चाहेंगे कि उसमें संतों ने गांव गांव नगर नगर जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, चाहे रामशिला पूजन हो, राम ज्योति हो, गंगा पूजा हो, भारत माता की यात्रा हो, संत यात्रा हो, महात्माओं ने संतों ने अपने मठ मंदिर छोड़ करके जागरण किया था, आज कहीं न कहीं पूरे जागरण को, पूरे परिश्रम को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। पूरा हिंदू समाज कहीं न कहीं व्यथित है, परेशान है, आज साधु समाज कहीं न कहीं अपने को ऐसा है कि हमने किसके लिए किया था, क्यों किया था, इसलिए उस ट्रस्ट में अच्छे संतों की जो समर्पित भाव से काम करते हैं उनकी सहभागिता हो, उनके दिशा।
0: अच्छा, आप चाहते हैं जो ट्रस्ट है उसमें भी संत समाज से इंक्लूजन रहे, और महंत सीताराम दास जी आप स्पोक्सपर्सन है निर्मोही अखाड़ा का, हाँ, और निर्मोही अखाड़ा का तो रोल काफी मशहूर रहा है, चाहे वो मूवमेंट हो या मंदिर के हिसाब से भी, लेकिन इसमें जब बात आती है जिस तरह का ये चार्ज आ रहा है, और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, तो अभी डिटेल्स ये भी नहीं हमें पता है कि कितने डोनेशन, कितने अमाउंट पे ये इश्यू आ रहा है, तो जब आप सुनते हैं कि कम से कम एकदम एक्शन लिया गया है, पहला सेंटिमेंट क्या है? क्या ये हिंदू आस्था पे अटैक है, या हिंदू आस्था के नाम पे जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिनमें इतनी भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि वो राम मंदिर में बैठकर ये महापाप कर रहे हैं, उनको किस तरह की पनिशमेंट मिली जाए, हिंदू आस्था पर किस तरह का ये अटैक है?
3: देखिए पूजा जी, एक आपने जो शुरुआत की है मैं उससे प्रारंभ करूंगा। आपने कहा कि निर्मोही अखाड़े का रोल बहुत बड़ा रहा है, तो 23 मार्च 1528 को जब मीरबाकी आया था तो वहां पर निर्मोही अखाड़ा ही था। और उसके बाद में 1866 में जब हमारे महंत खेमदास जी महाराज ने मुकदमा किया और मुकदमा जीते, उसके बाद में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। 1885 में हमारे महंत रघुवर दास जी महाराज ने मुकदमा किया और 1949 में जब रामलला वहां पर प्रकट किए गए ऐसा कहते हैं, तो वहां पर 1949 में रामलला प्रकट नहीं किए, 1941 रामलला तो पहले से बैठे हुए थे, 1941 से निर्मोही अखाड़ा वहां पर सेवा पूजा पहले से ही कर रहा था। और उसके बाद में 1959 में पहला पक्षकार बन करके निर्मोही अखाड़ा गया।
0: आप मुझे बताइए, क्या आप, क्या अभी जो एक्शन लिया जा रहा है उससे आप कन्विंस रहे हैं? आपको लगता है करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ये बिट्रेल है?
3: ये एक्शन नहीं है, ये दिखावा है और ये एक षड्यंत्र है, ये एक्शन नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक्शन करना होता तो मैं एक बार बार बार कह रहा हूँ कि भरत तिवारी जो बिहार में बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जजमेंट के गोली मार दी गई, और जो व्यक्ति अभी कह रहे थे प्रमोद कृष्णन जी कि खुलासा होना चाहिए, खुलासा तो हो चुका है, अब तो इनको सजा मिलने की जरूरत है।
0: आचार्य जी, आप मानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, क्या आई वॉश है? क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता था जो आई वॉश नहीं हो? जी जी हाँ, आप चाह रहे गिरफ्तार करना चाहिए, किसको करा तो है, गिरफ्तारी तो हुई है 8 लोगों की,
3: कड़ी सजा। और ये जो अभी गिरफ्तारी भई है ये दिखावा है, वही चोर, वही FIR करने वाले, वही गिरफ्तार करने वाले, वही चोरी करने वाले, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। देश देख रहा है, राष्ट्र देख रहा है, राम भक्त देख रहे हैं, ये चलेगा नहीं।
0: आचार्य जी बताइए, और किस, और ये आप क्यों ये जो है इसको आप काउंटर कर रहे हैं, कि मतलब किस तरह से इसको देखेंगे आप?
1: और देखिए पूजा जी, बात ये है कि एक चोरी एक दिन में हो जाए तब तो समझ में आती है, लेकिन निरंतर वो लूट हो रही थी निरंतर, तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। और कोई भी, ये जो 8 पकड़े गए हैं तो अब ये बताएंगे कि और कौन कौन है।
0: हाँ।
1: तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अभी 8 की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे किसकी गिरफ्तारी होगी वो ये बताएंगे, क्योंकि पहली बात है चोरी करना, दूसरा है चोरी कराना, तीसरी बात है चोरी हो रही है लेकिन हम देखते रहे, तो तीनों जो बातें हैं इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का, जो लोग अपनी नेक कमाई में से वहां पैसा जिन्होंने दिया है उनके दिल पे कुठाराघात हुआ है, वो सब के सब दुखी हैं, हर घर में इसकी चर्चा है, मगर क्योंकि ट्रस्ट की जो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करना उचित नहीं होगा, और पूरे के पूरे ट्रस्ट को, अपना ट्रस्ट कायम रखना होगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए
0: कुछ कहना चाह रहे हैं, पदों से इस्तीफा देना चाहिए। क्या ये ट्रस्ट की बात है पूरी? अब आप बताइए, नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर दास जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो राम भक्तों की श्रद्धा का दोहन हुआ है, इसमें एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, और जब तक एक एक अपराधी दंड का भागी नहीं बनता, कठोर दंड नहीं मिलता, तब तक राम भक्तों को प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो समर्पण करता है, 1 रुपए भी समर्पण करता है, उसको लगता है कि भगवान की सेवा में मेरा दिया हुआ निधि जाएगी, उस निधि को व्यक्तिगत उपयोग करना या उससे चोरी करना इतना बड़ा अपराध। राम राज्य में, राम मंदिर में,
0: महान सीताराम जी जो आप कह रहे हैं, जैसे जी आप कह रहे हैं कम से कम 8 लोग हुए हैं, वही तो आगे बताएंगे, अगर शुरुआत ही नहीं होगी,
3: चोरी की है,
0: जो शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे कैसे बता देगा?
3: ऐसा ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा नहीं है। जो मुख्य आरोपी है पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
0: कौन है मुख्य आरोपी आपके हिसाब से? कौन है मुख्य आरोपी?
3: गिरफ्तार करना चाहिए, और वो भी SIT गिरफ्तार करती, जो वहाँ की जो पुलिस है, जो अभी गिरफ्तार किया है और जिन्होंने FIR कराई है, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने ही FIR कराई है और ट्रस्ट के लोग ही चोरी कर रहे हैं, तो ये तो प्रक्रिया ही पूरी संदेह के घेरे में है, क्योंकि गिरफ्तार करने वाली संस्था SIT होती यदि, तो हमें भी लगता है कि यहाँ कुछ कार्य हो रहा है।
0: चक्रपाणी महाराज जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ तो चंपत राय की गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या आप भी अग्री करते हैं उससे?
2: देखिए, मूल विषय गिरफ्तारी उद्देश्य नहीं, मूल विषय ये चोरों का पर्दाफाश होना जरूरी है। हाँ। और कोई भी हो, जितने हो सकता है और लोग भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये ना तो सबके वो होना चाहिए, सबको सजा मिले। लेकिन एक बात है कि जिस प्रकार से चोरों ने समझा, भगवान राम के शरण में रह करके सीसी कैमरे हटा दिया जैसे सुनने में आया, और मात्र 45 दिन का उसमें सैकड़ों बार उसमें वीडियो आया चोरी करते हुए, लेकिन ये भूल गए कि ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं, उनके सीसी कैमरा हमेशा चालू होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा कुछ सोचते भी हो गलत वो भी लिखा जाता है। उनके यहाँ सजा तो मिलनी ही मिलनी है, अगर यहाँ तुम किसी तरह से यहाँ भी नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ योगी जी और मोदी जी हैं, उन तो सजा जरूर दिलवाएंगे, और ऊपर भगवान चित्रगुप्त महाराज है, और निश्चित रूप से वो छोड़ने वाले नहीं है, सजा तो होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कलंक देने का काम किया है, जो हिंदुओं को एक घाव देने का काम किया है, वो हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा।
0: और आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं,
1: बताइए। देखिए स्वामी जी महाराज और नवल किशोर दास जी को मैं सुन रहा हूँ, हम किसी भी निर्दोष को सूली पे चढ़ाने के पक्ष में नहीं, पूरे के पूरे ट्रस्ट को हम ये कहें कि ये ही बेईमान है, चोर है। हाँ। ये मैं नहीं कहना, मैं ये नहीं चाहता हूं।
0: तो अगला ट्रस्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो चाहे वो संत समाज से हो, क्या वहां प्रॉब्लम नहीं हो सकती?
1: ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। मेरा कहना ये है कि पहले तो ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। फिर जांच के अंदर जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि ये लोग बताएंगे कि क्या इनको संरक्षण कौन देता था, तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे और हम इनको जेल भेज देते हैं, ठीक है, तो फिर जांच आगे बढ़ेगी कैसे? हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए या उन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ये अपराध को संरक्षण दिया।
0: अगर मैं सही थी, महंत सीताराम जी आप ही कह रहे थे कि चंपत राय को अरेस्ट होना चाहिए।
3: अरे आचार्य जी कैसी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एसआईटी में प्रमोद कृष्णम जी ही बैठे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है, ऐसी प्रक्रिया समझा रहे हो। क्यों? उसका कारण है आचार्य जी, आपका दोष नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो आप खुल करके वो बात नहीं कह सकते ना, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, समस्या ये है, इसलिए
1: प्लीज ऐसी बातें मत करिए जो जिनका आपको पता नहीं है। पहली बात मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, सुनिए पहली बात, एक मिनट सीताराम दास जी प्लीज, महन जी मेरी बात सुनिए, पहली बात भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूं, नंबर एक।
0: मैं वही आपसे पूछने वाली थी,
1: ठीक है, आई एम सॉरी टू से, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक सेकंड, आप अपने किसी व्यक्तिगत दुराग्रह की वजह से पूरे के पूरे ट्रस्ट को बेईमान ठहराएं, मैं उस पक्ष में नहीं हूं, आप अपनी बात करिएगा, मैंने अपनी बात करी है, मैं ये चाहता हूं कि पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा देना चाहिए, मैंने साफ बात की, तो मैंने तो कोई पार्शियलिटी की बात नहीं की, मैंने किसी के पक्ष में बात नहीं की। अब आप किसी भी दुराग्रह से ग्रस्त होकर के मुझ पर हमला करें, कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ जो हुआ है उसकी तह तक जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवाद पार्टी, ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय हो सकता है।
3: नहीं चंपत राय भैया, प्रमोद कृष्णम जी आप दरवाजे से घुसोगे दीवार फांदोगे, दरवाजा चंपत राय भाई,
1: आप ये कह रहे हैं, मैंने उसका विरोध कहां किया? सीताराम दास जी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने का, आप कह सकते हैं कि ये अपराधी है ये नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं जो सरकम चांसेस हैं, जो सरकम चांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है।
3: आचार्य जी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सारी चीजें सामने आ चुकी, खुलासा क्या आप बार बार आप लोग कह रहे हो खुलासा होना चाहिए, खुलासा
1: अगर आपको मालूम है कि सारी चीज सामने आ चुकी हैं, तो आप बताइए कि चंपत राय जी को अरेस्ट करने के बाद में, चंपत राय जी को जेल भेजने के बाद में उनके साथ और कौन कौन थे, वो भी नाम बता दीजिएगा।
3: हम तो बता रहे हैं ना, चंपत राय जी के साथ साथ में अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और उसके साथ में पूरा ट्रस्ट, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, आपने उनको तो गिरफ्तार किया नहीं,
1: छोटे-छोटे
0: लेकिन कोई चार्ज तो आएगा ना, जब वो चार्ज कहां से आ रहा है, आप जिसके बारे में कह रहे हैं अरेस्ट होना चाहिए, सब अरेस्ट हो जाने चाहिए, कहीं तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं तो नाम आए, ऐसे ही तो किसी को उठा के जेल में नहीं डाल दिया जा सकता है ना। महंत सीताराम जी,
3: पूजा जी मैं पूछ रहा हूँ, भरत तिवारी का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, भरत तिवारी की को गोली मार दी गई,
4: अब वो बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर चलावे ना इनके टिन्नू बिन्नू से सबके, चंपत राय और अनिल मिश्रा के प्रति इनके घरों में चलाए ना बुलडोजर।
1: सीताराम दास जी बड़े सम्मानित संत हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं
0: बुलडोजर वाली।
1: लेकिन लेकिन मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह भरत तिवारी का एनकाउंटर है, मैं उस एनकाउंटर को एनकाउंटर नहीं मान रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि वो हत्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, बट वो एक अलग विषय। मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस एक तो आप अपनी बात कह जाते सुनना नहीं चाहते, महंत जी सुना भी कीजिएगा कोई क्या कह रहा, सुन तो लीजिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप सुन तो लीजिएगा, आप सुनना नहीं चाहते, आप ये कहना चाहते हो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं इन्हें एनकाउंटर कर दिया जाए।
4: मैं नहीं बोलता,
1: आप ये कहना चाहते हो कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए,
4: बिल्कुल क्यों नहीं
0: नहीं किया नहीं। देखिए देखिए स्वामी जी महंत जी, थोड़ा सा हम अपनी लहजे पे अपनी बात पे कंट्रोल करेंगे, हम ये ऐसे ऐसे चीजें नहीं कहेंगे किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए, अभी वो चार्जेस आए नहीं है। महंत सीताराम जी आप निर्मोही अखाड़ा से हैं, हम ऐसे चार्जेस के बिना ऐसी बात नहीं कर सकते, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाएगा।
1: किसका है किसका नहीं है,
0: स्वामी चक्रपाणि महाराज जी आप हमें बताइए,
1: टीम करेगी
0: यहाँ देखिए कैसे समाज में जो संत समाज है उसी में एक तरह से डिबेट शुरू हो गया है, तो किस तरह से आगे जाया जाए ताकि जो जो भी रहे हैं जुड़े रहे हैं मंदिर से आस्था से किस तरह से आगे जाया जाए, क्या इसमें सीधा तौर पे ट्रस्ट पे ही मुद्दा आता है, सारे ट्रस्ट को रिजाइन कर देना चाहिए, पर अगला ट्रस्ट कैसे बनेगा वो भी तो फिर उसमें भी तो एक प्रोसीजर और प्रोटोकॉल देखना चाहिए।
2: नहीं देखिए संत जो भी हैं सबके अंदर पीड़ा है, चाहे हमारे निर्मोही अखाड़े के हमारे पूज्य संत हैं या हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, सब यही चाहता है कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिले। सवाल इस बात का है, आचार्य जी भी वही कह रहे हैं कि अगर जेल को ही जेल में तुरंत भेज दिया जाए तो भाई जांच किससे होगी, किससे जाके पूछा जाएगा, तो ये तो ठीक है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है इसमें जो जो सभी को जिस प्रकार से जो कष्ट हुआ है, जो किसी प्रकार से कहीं ना कहीं भावना आहत हुई है, कहीं ना कहीं लोगों की भावना को ठगा गया है, तो उस ठगने में निश्चित रूप से ट्रस्ट में जो है वो लोग जिम्मेदार हैं, और इसको कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए। आप सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ डिबेट से नहीं होगा, निश्चित रूप से इस पे हमें पूरा विश्वास है कि एजेंसी कार्य करेगी। और जैसे अभी देखिए ये पता ही नहीं चल रहा था कि FIR होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो टिन्नू मिन्नू जो भी नाम आ रहे हैं 6-7-8, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आकर के वो इतने हैसियत वाले थे कि बोरी में नोट लादा और निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं था, जरूर किसी का सह होगा, जरूर किसी का साथ होगा, जरूर किसी ने उसको पीछे से वो किया होगा कि चिंता ना करो मैं हूं, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष है उनका बयान है स्पष्ट, उन्होंने कहा है कि कोई यहां व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसे आता था और जाता था, किसी प्रकार की कोई किसी की चेकिंग नहीं थी, तो जब इस तरह की बात वहां
0: और कैसे किसी टिन्नू यादव जैसे एसोसिएट को इतना फ्री एक्सेस था टेंपल कॉम्प्लेक्स में, वो कौन से बड़े ऑफिशियल थे जिनको और उनके साथ कुछ और इतनी आसानी से कैसे
2: बैठे हुए लोग।
0: नवल किशोर दास जी महाराज आप अखाड़ा परिषद से हैं, मैं आपसे क्योंकि आप थोड़ी देर नहीं थे तो आखिरी कमेंट्स में, तो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता है कि कितने का जो हेरा फेरी मानी जा रही है वो हुई है, तो कैसे हिंदू समाज को और देश भर वर्ल्ड ओवर कैसे एक अश्योरेंस जाएगा कि जो भी अब इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से हो, सामने सामने हो, और मुख्यमंत्री ने क्योंकि ये आश्वासन दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा इस हिसाब से।
3: मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूँ भंग ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन प्रबंधन किसी अन्य लोगों को दिया जाए, और जब तक पूरी जांच ठीक से नहीं हो जाती वर्तमान ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस भूमिका से अलग रखा जाए, इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सकें और पूरा निर्णय हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब लोग पदेन रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पूरी जांच ठीक से हो पाएगी, इसलिए सभी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने आप को अलग कर लें और कुछ प्रबंधन में अन्य लोगों को जोड़ दिया जाए तत्कालीन, बाकी बाद में जो निर्णय करना हो करें, पर तत्कालीन कोई दूसरी व्यवस्था की जाए प्रबंधन में, और इसलिए संबंधित अधिकारी उनको ठीक से पूछ सके और पता लगे कि किनके संरक्षण में यह हो रहा था। मैं पूर्ण सहमत हूँ महाराज जी से, चक्रपाणि जी से, कि बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहमति, उनके बर्दस्त के बिना इतना बड़ा गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए वो कौन है वो जांच होना चाहिए उसकी, और उसको जांच को उसे कान पकड़ करके जो भी उसको कठोर से दंड मिले, दंड मिल जाए, तो आम जो श्रद्धालु हैं, अन्य राम भक्तों में लगेगा कि जात ठीक हुई और अपराधी को दंड मिल रहा है।
0: आप तो सबने अपनी बात रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए आस्था पे एक बने रहना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि अब आगे ऐसा ना हो, ये किस तरह से सरकार इंश्योर करेगी।
5: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders. Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
7: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
8: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। फ्रेंड्स, मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, फूड सिक्योरिटी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है।
सेशल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशल के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं। आज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए एमओयू से सेशेल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिंस उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशेल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन सहित क्लीन एनर्जी के नए क्षेत्रों में भी विन विन सहयोग जारी रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी हमारे संबंधों का एक स्वाभाविक और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। हम ओशन ऑब्जर्वेशन, मरीन साइंस और कोस्टल मैनेजमेंट में भारत की एक्सपर्टाइज सेशल के साथ साझा करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विषय पर आज दोनों पक्षों के बीच एमओयू किया गया है। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत सेशल संबंधों की असली शक्ति हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं। हमारी आज की चर्चाओं से यह संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के स्पोर्ट्समैन और एथलेट्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशेल्स में योग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक जुड़ावों को दर्शाती है। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां

0: समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक्सलेंसी, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बोकू।
1: Prime Minister Modi's joint statement after holding bilateral talks with the Seychelles President Patrick Hermini. And Prime Minister Modi also mentioned how there's a UPI boost for Seychelles as an MOU has been signed. And so Seychelles gets a digital payments push. That's the UPI. And the security, sustainability are the shared responsibility of both the countries that was mentioned by Prime Minister Modi. And he also called for deeper India-Seychelles ties. And Prime Minister Modi also mentioned that our real bilateral power is people-to-people ties. And that India will be sharing expertise in ocean observation.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: माय ब्यूटी डजंट कम फ्रॉम अ लैब, कम्स फ्रॉम माय रूट्स, फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ विजडम एंड फ्रॉम नेचर्स लैब। दिस इज हेक्सा ऑर्गेनिक्स, ऑनेस्ट हर्बल हेरिटेज।

0: नीटचा पेपर फुटला. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे, पण त्यातलं जे काही केंद्रबिंदू होतं ते आपल्या दुर्दैवाने आपल्या महाराष्ट्रातलं होतं. आणि असं म्हणतात की ते पकडलेले किंवा ज्यांच्यावरती आरोप आहेत ते सगळे यांच्या परिवाराशी संबंधित होते. मग या पापाबद्दल कोणालाच काही वाटत नाहीये, किंवा तुम्हाला त्याच्याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून हे फोडाफोडी चाललंय असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.
1: कोई भी चोरी करता है तो भाजपा सरकार बढ़ती देता है. तो 2026 में वापस एक बार नीट का पेपर फूटा. वो फूटने के बाद आपने देखा होगा लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा दिखाई दिया. तो इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिखाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी सब जगह लगा दी. लेकिन इंक्वायरी कितने दिन चली? 15-20 दिन. अभी इंक्वायरी का क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा. उसमें टीट का पेपर अभी जो फूटा है, 4.5 लाख विद्यार्थी उसके एग्जाम वहां पे देते हैं, तो उसके कारण जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है. और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा. सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं उनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya Police in Ram Mandir donation theft matter. As per the information, The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखिए राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: What did the Ram Mandir Trust know? And how long had it known? That's the question at the heart of the donation theft case now. India Today has accessed exclusive CCTV visuals dating back to June 5th. The visuals capture accused Avinash Shukla being escorted by police. Moments later, a black bag is seen that sources say contained cash recovered during the operation. According to sources, on June 5th, trust representatives accompanied police to Avinash Shukla's premises, acting on the instructions of Champat Rai, then General Secretary of the Trust. During that visit, cash was allegedly recovered, yet no formal complaint was filed. No FIR was registered. Sources say the police action remained at an informal level and the alleged theft surfaced publicly only 2 days later, on June 7th. This comes as the probe continues to gather pace. Police have raided the premises of all the eight accused. Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, Ram Shankar Yadav alias Chinnu, Karunesh Pandey, Subhash Srivastava, Ramashankar Mishra, Manish Yadav and Avinash Shukla. Investigators are now tracing the proceeds of the crime and examining assets suspected to have been acquired through the offence. Meanwhile, the trust has confirmed that Champat Rai and trustee Anil Mishra have submitted their resignations. Facing mounting scrutiny, the trust has said that it's shocked and hurt by allegations of donation loot and is committed to a fair and transparent investigation. The trust has also assured devotees that all donated offerings remain secure and vowed action against the culprits. As investigators dig deeper, questions are being raised about why a formal complaint was not filed for 2 days despite the case reaching the police on June 5th. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
1: Now, Kerala Agricultural University has landed in a fresh political controversy after Governor Rajendra Alekar appointed Dr. Sajita Rani as Vice-Chancellor in charge, reportedly bypassing the state government's recommended panel. The appointment has also sparked allegations of political influence, with Dr. Sajita linked to the BJP-affiliated Adhyapaka Parishad, while the agricultural minister maintained that the government's list was prepared based on academic merit. The governor's choice has triggered a sharp political exchange. Decision has drawn strong objections from the state government, with the education minister calling it a unilateral move that violates democratic norms.
2: സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേര് ദേശീയതലത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ഉള്ള നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ളതായ പല വേദികളും പങ്കിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടേതാണ്. അതിൽ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ ആ പേര് ലോക്ഭവന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ലോക്ഭവൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം അത് സീനിയോറിറ്റി എന്നുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല നിലവിൽ ലോക്ഭവനിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേര്.
1: The special intensive revision, the much debated special intensive revision of electoral rolls is now underway across Telangana, with booth level officers carrying out door-to-door verification and distributing enumeration forms. While officials say the process is aimed at updating voter rolls ahead of the future elections, the exercise has sparked a political slugfest, with the AIMIM chief, Asaduddin Owaisi, hitting out at the BJP. Here's a report on all of what's unfolded so far. Take a look.
0: The special intensive revision of electoral rolls has picked up pace in Telangana. Booth-level officers are carrying out door-to-door verification, distributing enumeration forms and verifying voter applications to ensure that the electoral database is updated ahead of future elections.
3: पचास्कर अभी तक कल किट लिए थे मैं, फिर आज से शुरू करें, आज 50 हाउसेस पे।
4: कितने एनुमरेशन फॉर्म्स आपने अभी तक दिए हैं और एक दिन में कितने फॉर्म्स दे सकते हैं?
3: कितने 100 फॉर्म्स दे सकते हैं।
5: अभी तो फर्स्ट डे है आज हमारा, फर्स्ट डे में अभी तक 50 से 60 फॉर्म हम लोग दिए। अभी एक ऐसा है फर्स्ट के बाद में जो है फिर रिटर्न लेना है फॉर्म्स।
0: The exercise involves linking current voter records with the 2002 electoral rolls and scrutiny of applications for correction of voter details, deletion of names and change of address. Officials are also verifying supporting documents and conducting field inquiries whenever required to ensure that only eligible voters are included in the electoral rolls.
6: घर घर फिर के जो है ना ये लोग जो है ना मेहनत करके जो है ना फॉर्म बराबर दे रहे हैं, लोग पूरा समझा रहे और अच्छा बैठ के समझा के हमको बोल दे रहे कि ये करना बोल के हमको समझा रहे।
7: बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, हमारा 160 में है जो कल परसों स्टार्ट करेंगे ये लोग, तो पार्ट वाइज जो डे वाइज जो डिवाइड करके ये लोग नंबर वाइज लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं लोग।
4: द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज बाय द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन इन तेलंगाना स्टेट एंड टुडे इज द सेकंड डे। On 25th June is when the process had started and now is 26th June where the BLOs and BLAs are right now visiting the households door to door and giving their enumerated printed forms to the residents here.
0: The exercise has triggered a political slugfest. In an exclusive conversation with India Today, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has criticized the exercise, saying it would be difficult for many voters to trace details from the 2002 electoral rolls.
8: इलेक्टोर को अपने 2002 वोटर लिस्ट के डिटेल लिखना पड़ेगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो गरीब लोग हैं, चाहे स्पेशली मुसलमान, दलित और दूसरे जो गरीब जो स्लम्स रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये।
0: ओवैसी आल्सो स्लैम्ड द बीजेपी सेइंग दैट इफ पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एज प्रूफ, पीपल विल सून नीड टू होल्ड बीजेपी मेंबरशिप कार्ड्स टू बी इंक्लूडेड।
8: बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट प्रूफ नहीं है, आधार प्रूफ नहीं है, फिर क्या प्रूफ होगा बताइए। तो अब जाहिर है अब 2030 तक जिसके पास जिस किसी के खुशकिस्मत के पास बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड होगा उसी को मानेंगे।
0: द बीजेपी हैज हिट बैक क्वेश्चनिंग व्हाई द ऑपोजिशन इज वरीड अबाउट SIR।
9: That's a ongoing process. Why he should be really worried about just SIR? We have very clearly mentioned that the party, the Bharatiya Janata Party or Modi's government has nothing to do with the Election Commission of India. It's a constitutional authority which has been established much before Bharatiya Janata Party or Narendra Modi's government has come in that.
0: After door-to-door verification, the draft electoral rolls will be published on July 31st. A month's time will be given to file claims and objections and final electoral rolls will then be published on October 1st. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
1: And now going back to the world of sports, turning our focus to Mumbai, where football players, Bandra residents and local representatives are protesting against the proposed conversion of 8,450 square meters of Neville D'Souza football ground in Bandra Bandra Reclamation into a convention and exhibition centre. Now, the protesters are demanding that the ground retain its sports reservation and instead be upgraded with modern facilities for athletes and the community. Proposal recently cleared by the BMC's Improvement Committee has sparked concerns among footballers and residents who say that the ground is a crucial sporting space for the city. Opened in 2018, the Neville D'Souza Football Ground is among Mumbai's few dedicated football venues and has become a hub for thousands of aspiring players.
10: So I've been playing football here for many, many years. Ever since Cooperage became privatized, even still at that time, there used to be matches here. But ever since then, after that, we have been playing here. In fact, last year, I won a tournament here. So this ground holds a lot of memories. And especially for the younger girls on our team is who it breaks my heart for even more, because they are the ones who are going to get an opportunity because they are in that age group of 16 to 20. And those are very crucial years for them. And to be able to see this ground taken away for a reason like building a convention center is just, it's, you don't know how to justify it.
11: मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं मुंबई एक साल पहले आई थी और मैं तब से काफी रेगुलरली फुटबॉल खेल रही हूँ। हर महीने एटलीस्ट 3-4 मैचेस तो खेले ही है मैंने। एंड एज अ फुटबॉलर बहुत मेरा दिल टूट रहा है एक्चुअली कि हमारा जो एक स्पेस है मुंबई में जहाँ पे हम 11 साइड खेल सकते हैं, 11-11 खेल सकते हैं, वो भी टूटा जा रहा है। और वो भी मतलब ऐसे रीजन के लिए कि कन्वेंशन सेंटर बनाना है, ऐसा नहीं कि इसको रिस्टोर करना है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा करना है या कुछ। तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ,
12: ये लैंड जो है महाडा के पास है करंट स्टेटस में, आपकी जो लीज थी इस फुटबॉल ग्राउंड के लिए महाडा के साथ थी, ये लीज कब एक्सपायर हुई? आपने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया था और आपको कब इन्फॉर्म किया गया कि ये एग्जीबिशन सेंटर को दिया जा रहा है?
13: सो ये जो लीज है 2024 में एक्सपायर हो चुका है। फिर हम लोग ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी डाला है 2025 में भी, ऑल्सो वी हैव अप्लाइड। एंड उसके बाद कहीं हमको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये ग्राउंड पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। और हम तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये पीजी रहना चाहिए एंड इट्स अ प्ले ग्राउंड। फुटबॉल बच्चे जो यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए तो इनके लिए रहना ही चाहिए एंड इट्स अ प्लेग्राउंड बेसिकली फॉर फुटबॉलर्स।
12: लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप लीजी हैं महाडा के, ये लीज पे था, लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या हुए? यानी कि आपको इंटीमेशन दिया गया, कि आपको अब एविक्शन नोटिस आया है, आपको कैसे पता चल रहा है कि एग्जीबिशन सेंटर के लिए दे दिया गया?
13: हमको कहीं नोटिस नहीं मिला है महाडा से ना बीएमसी से। हमको पता चला इम्प्रूवमेंट कमेटी का जब हियरिंग हुए या उनके मीटिंग्स होते थे तो वहां से हमको पता चला है।
12: Yourself a football player, there have been a debate. On one hand, there are technicalities, aspects of who owns the ground. MMRDA gave it to MHADA, MHADA came to BMC for approval. On the other hand, there are sentiments and a lot of talent of football coming out from this ground. So how do you look at it?
6: I don't know about the other aspect because I know only about football. Because being a Mumbaikar, I think because of Mumbai football, I reached till here. So before I was a professional football player, I played almost 11 years for Indian team. Now I'm a professional coach. So because of Mumbai football, I made my career. I think if football would have been not there, I don't know what I would have been there. So I'm here to support Mumbai football.

जो मेन बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, किसी पैसे गिनने वाले को पकड़ लिया, किसी छोटे से चौकीदार को पकड़ लिया। भाई जिन 8 लोगों को पकड़ा उनसे पूछना तो चाहिए था कितनी चोरी करी तुमने, किसके पास पहुंचाया, कहाँ छुपाया, पूछताछ होती है ना पुलिस, पूछ वो भी नहीं करी। रिकवरी 80 लाख रुपए की हुई है इन 8 लोगों से, बाकी कहाँ गया? तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ गया इसकी जांच होनी चाहिए।

0: Social media users praise the candidate's unconventional and creative approach to reaching potential employers.
1: And then, once you open it, it is an ad for InstaHelp. It's just all the good things about their services. I'll put a screenshot. InstaHelp, you've got me. Urban Clap, perfect way to get someone's attention early in the morning, jahan pe unko 10 cheezein karne ke liye. Good job.
2: It's been 2 to 3 weeks since we moved back to India after living in Germany for over a decade. And every single day feels like relearning how life works.
0: After spending over 15 years in Germany, a woman who moved back to Pune shared her experience of dealing with reverse cultural shock. Her candid reflection about readjusting to life in India resonated with many returning NRIs who related to the challenge of adapting back home.
2: To now switching to English, Marathi and Hindi, from quiet streets to vibrant, bright and streets full of activities and honking, from disciplined and structured traffic to kind of free-flowing traffic, from highly structured systems to flexible jugaad solutions, from people starting their morning at 6 a.m. to hearing "Kyara baje dukaan khulegi madam," from hyper-punctual schedules to delays of 30 to 60 minutes being considered completely normal, from a DIY culture to a convenience and service-driven society. Some things feel familiar, some things feel completely new again. And honestly, moving back to your own country after so many years feels like a reverse cultural shock too. Follow along as we navigate this transition, make new lifestyle choices and rebuild our life in Pune, India.
3: Guys, मैं अपने सपने पूरा करने मुंबई आया हूँ. ये देखो, बिना बालकनी वाला फ्लैट. तो जो लोग भी सपना देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बस एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सपना ऐसा देखो जिसमें मुंबई नहीं आना पड़े.
0: A content creator has gone viral for hilariously capturing the financial shock of renting a home in Mumbai. Through sarcasm and relatable observation, the video highlighted the city's notoriously expensive housing market, striking a chord with students, professionals and dreamers trying to build a life there.
3: क्योंकि भाई साहब, जब आप अपना सपना लेके मुंबई आओगे और आपको यहाँ के घर का रेंट पता चलेगा, तो भाई साहब आपका ये सपना हो जाएगा कि ये बस रेंट अफोर्ड कर लूं. या फिर आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि सपने पूरे करने इतने इंपॉर्टेंट हैवी नहीं, रहने देता हूँ. तो है सुपचिंतक, मैं बस आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि विदाउट मुंबई सपने देखोगे तो सुखी रहोगे. जय हिंद, जय सपने.
4: गाइस, मेरा एक फॉरेनर मैनेजर है जिसने आज मुझे ऑफिस में काम करने से मना कर दिया. बोला कि सौरभ प्लीज टेक अ लीव जस्ट बिकॉज आज मेरे बेबी का फर्स्ट डे है इन प्री स्कूल.
0: An Indian professional shared how his foreign manager insisted he take the day off when he learned it with his child's first day at preschool. The wholesome video sparked conversation about work-life balance and left many social media users wishing for similar understanding bosses.
4: जबरदस्ती की छुट्टी करा दी, बोला कि नहीं तुम अपने preschool के पास जाओ, वहाँ पे उसके साथ time spend करो because first day he'll be very scared and everything. Now can you imagine, कोई भी Indian manager ये चीज सोच भी सकता है? नहीं सोच सकता. वो इनफैक्ट ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, स्कूल में भेजिए, अब तो आपका वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ठीक है लेट्स कंटिन्यू द वर्क. ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है इंडियन वर्सेस फॉरेनर मैनेजर्स के अंदर, ये सबको पता है, ये इंडियन मैनेजर्स को भी पता है, बट समहाउ नोबडी इज विलिंग टू चेंज. जितने भी इंडियन मैनेजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा इस चीज से सीख लेना यार, बिकॉज आई थिंक कुछ चीजें ऑफिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ऑल्सो कॉमेंट बिलो कि आपका एक्सपीरियंस इंडियन मैनेजर के साथ कैसा रहा है.
0: A Delhi woman fulfilled a lifelong dream by taking her 90-year-old grandfather and 80-year-old grandmother on their first international trip. The emotional video documenting the couple's journey to London touched hearts online and proved that adventure has no age limit.

फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, who आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on an angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
1: राजनीति तो आपने कर ली राम के नाम पर जो श्रद्धा लोगों की थी उसको लेकर अगर आप भरोसा फिर भी लोगों को नहीं दिलवा पाए तो आज आम आदमी किसकी तरफ देखेगा? यहां पर भी अगर चोरी हो रही है तो आम आदमी किस पे भरोसा करे? और ये सवाल सत्ता पक्ष वालों को ना पूछे तो किसको पूछे? राम के नाम पे वोट मांगना तो बहुत आसान है, पर राम के नाम की मर्यादा रखना भी आवश्यक है। तो इस पे सबको उठ के खुलकर बोलना चाहिए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है, यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था। फिलहाल जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है, और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहाँ से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है। राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा। यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड, सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp, and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे।
0: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter. As per the information, the houses of the five accused from 8 was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
2: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने।
2: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all 8 accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on an angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lovekush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे, नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: में अविनाश शुक्ला के घर पर यहां पर पुलिस पहुंची थी। जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है, यहां पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था। फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है। राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा। You can see in the visuals, there are police officials outside. Some of the police officials are inside questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे।
0: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter. As per the information, the houses of the 5 accused from 8 was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
2: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने।
2: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all 8 accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उष्टिनु यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिनु यादव का घर है रामशंकर यादव टिनु यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
1: राजनीति तो आपने कर ली राम के नाम पर जो श्रद्धा लोगों की थी उसको लेकर अगर आप भरोसा फिर भी लोगों को नहीं दिलवा पाए तो आज आम आदमी किसकी तरफ देखेगा? यहां पर भी अगर चोरी हो रही है तो आम आदमी किस पे भरोसा करे? और ये सवाल सत्ता पक्ष वालों को ना पूछे तो किसको पूछे? राम के नाम पे वोट मांगना तो बहुत आसान है, पर राम के नाम की मर्यादा रखना भी आवश्यक है। तो इस पे सबको उठ के खुलकर बोलना चाहिए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा

फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उफ्टिनु यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिनु यादव का घर है रामशंकर यादव टिनु यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on an angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं उनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter. As per the information, The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha.

0: Now, Kerala Agricultural University has landed in a fresh political controversy after Governor Rajendra Alekar appointed Dr. Sajitha Rani as Vice-Chancellor in charge, reportedly bypassing the state government's recommended panel. The appointment has also sparked allegations of political influence, with Dr. Sajitha linked to the BJP-affiliated Adhyapaka Parishad, while the agricultural minister maintained that the government's list was prepared based on academic merit. The governor's choice has triggered a sharp political exchange. Decision has drawn strong objections from the state government, with the education minister calling it a unilateral move that violates democratic norms.
1: സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേര് ദേശീയ തലത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ഉള്ള നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ളതായ പല വേദികളും പങ്കിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടേതാണ്. അതിൽ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ ആ പേര് ലോക്ഭവന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ലോക്ഭവൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം അത് സീനിയോറിറ്റി എന്നുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല നിലവിൽ ലോക്ഭവനിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേര്.
0: The special intensive revision, the much debated special intensive revision of electoral rolls is now underway across Telangana, with booth level officers carrying out door-to-door verification and distributing enumeration forms. While officials say the process is aimed at updating voter rolls ahead of the future elections, the exercise has sparked a political slugfest, with the AIMIM chief Asaduddin Owaisi hitting out at the BJP. Here's a report on all of what's unfolded so far. Take a look.
2: The special intensive revision of electoral rolls has picked up pace in Telangana. Booth level officers are carrying out door-to-door verification, distributing enumeration forms and verifying voter applications to ensure that the electoral database is updated ahead of future elections.
3: 50 kare abhi tak kal kit liye the main fir aaj se shuru kare aaj 50 houses pe
4: कितने एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपने अभी तक दिए हैं और एक दिन में कितने फॉर्म्स दे सकते हैं?
3: कितने 100 फॉर्म्स दे सकते हैं?
5: अभी तो फर्स्ट डे है आज हमारा. फर्स्ट डे में अभी तक 50 से 60 फॉर्म हम वहाँ दिए. अभी एक ऐसा है फर्स्ट के बाद में जो फिर रिटर्न लेना है फॉर्म्स.
2: The exercise involves linking current voter records with the 2002 electoral rolls and scrutiny of applications for correction of voter details, deletion of names and change of address. Officials are also verifying supporting documents and conducting field inquiries whenever required to ensure that only eligible voters are included in the electoral rolls.
6: Ghar ghar phir ke jo hai na wo ye log jo hai na mehnat karke jo hai na paama barabar de rahe hai logo pura samjha rahe aur acha baith ke samjha ke humko bol de rahe ke ye karna bol ke humko samjha rahe
7: bahut achhi tarah samjhaya gaya hai hamara 160 mein hai जो कल परसों स्टार्ट करेंगे ये लोग तो पार्ट वाइज जो डे वाइज जो डिवाइड करके ये लोग नंबर वाइज लेके आ रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं लोग.
4: द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज बाय द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन इन तेलंगाना स्टेट एंड टुडे इज द सेकंड डे. On 25th June is when the process had started, and now is 26th June where the BLOs and BLAs are right now visiting the households door to door and giving their enumerated printed forms to the residents here.
2: The exercise has triggered a political slugfest. In an exclusive conversation with India Today, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has criticized the exercise, saying it would be difficult for many voters to trace details from the 2002 electoral rolls.
8: इलेक्टोर को अपने 2002 वोटर लिस्ट के डिटेल्स लिखना पड़ेगा. आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो गरीब लोग हैं, चाहे स्पेशली मुसलमान, दलित और दूसरे जो गरीब जो स्लम्स रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये.
2: Owaisi also slammed the BJP, saying that if passports, Aadhaar cards and birth certificates are not accepted as proof, people will soon need to hold BJP membership cards to be included.
8: बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट प्रूफ नहीं है, आधार प्रूफ नहीं है, फिर क्या प्रूफ होगा बताइए। तो अब जाहिर है अब 2030 तक जिसके पास जिस किसी के खुशकिस्मत के पास बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड होगा उसी को मानेंगे।
2: The BJP has hit back, questioning why the opposition is worried about SIR.
9: That's an ongoing process. Why he should be really worried about just SIR? We have very clearly mentioned that the party, the Bharatiya Janata Party or Modi's government has nothing to do with the Election Commission of India. It's a constitutional authority which has been established much before Bharatiya Janata Party or Narendra Modi's government has come in that.
2: After door-to-door verification, the draft electoral rolls will be published on July 31st. A month's time will be given to file claims and objections, and final electoral rolls will then be published on October 1st. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
0: And now going back to the world of sports, turning our focus to Mumbai, where football players, Bandra residents and local representatives are protesting against the proposed conversion of 8,450 square metres of Neville D'Souza football ground at Bandra Reclamation into a convention and exhibition centre. Now, the protesters are demanding that the ground retain its sports reservation and instead be upgraded with modern facilities for athletes and the community. Proposal recently cleared by the BMC's Improvement Committee has sparked concerns among footballers and residents who say that the ground is a crucial sporting space for the city. Opened in 2018, the Neville D'Souza Football Ground is among Mumbai's few dedicated football venues and has become a hub for thousands of aspiring players.
10: I've been playing football here for many, many years. Ever since Cooperage became privatized, even still at that time there used to be matches here. But ever since then, after that, we have been playing here. In fact, last year I won a tournament here. So this ground holds a lot of memories. And especially for the younger girls on our team is who it breaks my heart for even more, because they are the ones who are going to get an opportunity because they are in that age group of 16 to 20. And those are very crucial years for them. And to be able to see this ground taken away for a reason like building a convention center is just you don't know how to justify it.
11: मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है. मैं मुंबई एक साल पहले आई थी और मैं तब से काफी रेगुलरली फुटबॉल खेल रही हूँ. हर महीने एटलीस्ट 3-4 मैचेस तो खेले ही हैं मैंने. एंड एज अ फुटबॉलर बहुत मेरा दिल टूट रहा है एक्चुअली कि हमारा जो एक स्पेस है मुंबई में जहाँ पे हम 11 साइड खेल सकते हैं, 11 खेल सकते हैं, वो भी टूटा जा रहा है. और वो भी मतलब ऐसे रीजन के लिए कि कन्वेंशन सेंटर बनाना है. ऐसा नहीं कि इसको रिस्टोर करना है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा करना है या कुछ. तो मुझे बुरा लग रहा है.
9: ये लैंड जो है महाडा के है करंट स्टेटस में, आपकी जो लीज थी इस फुटबॉल ग्राउंड के लिए महाडा के साथ थी.
12: Correct.
9: ये लीज कब एक्सपायर हुई? आपने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया था और आपको कब इन्फॉर्म किया गया कि ये एग्जीबिशन सेंटर को दिया जा रहा है?
12: सो ये जो लीज है 2024 में एक्सपायर हो चुका है. फिर हम लोग ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी डाला है 2025 में भी, ऑल्सो वी हैव अप्लाइड. एंड उसके बाद कई हमको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये ग्राउंड पॉलिसी चेंज कर रहे हैं. और हम तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये पीजी रहना चाहिए एंड इट्स अ प्ले ग्राउंड. फुटबॉल बच्चे जो यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए तो इनके लिए रहना ही चाहिए एंड इट्स अ प्लेग्राउंड बेसिकली फॉर फुटबॉलर्स.
9: लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप लीजी हैं महाडा के. ये लीज पे था, लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है. तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या हुई? यानी कि आपको इंटीमेशन दिया गया क्या? आपको अब एविक्शन नोटिस आया है? आपको कैसे पता चल रहा है कि एग्जीबिशन सेंटर के लिए दे दिया गया?
12: हमको कई नोटिस नहीं मिला है महाडा से ना बीएमसी से. हमको पता चला इम्प्रूवमेंट कमेटी का जब हियरिंग हुए या उनके मीटिंग्स होते थे तो वहां से हमको पता चला है.
9: Yourself a football player, there have been a debate. On one hand, there are technicalities, aspects of who owns the ground. My MMRDA gave it to MAHADA, MAHADA came to BMC for approval. On the other hand, there are sentiments and a lot of talent of football coming out from this ground. So how do you look at it?
13: I don't know about the other aspect because I know only about football. Because being a Mumbaikar, I think because of Mumbai football, I reached here. So before I was a professional football player, I played almost 11 years for Indian team. Now I'm a professional coach. So because of Mumbai football, I made my career. I think if football would have been not there, I don't know what I would have been there. So I'm here to support Mumbai football and young generation, because if this ground goes, there is no no future for Mumbai football.
0: On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories right through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
14: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
15: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter. As per the information, The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on an angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे, नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
1: राजनीति तो आपने कर ली राम के नाम पर जो श्रद्धा लोगों की थी उसको लेकर अगर आप भरोसा फिर भी लोगों को नहीं दिलवा पाए तो आज आम आदमी किसकी तरफ देखेगा? यहां पर भी अगर चोरी हो रही है तो आम आदमी किस पे भरोसा करे? और ये सवाल सत्ता पक्ष वालों को ना पूछे तो किसको पूछे? राम के नाम पे वोट मांगना तो बहुत आसान है, पर राम के नाम की मर्यादा रखना भी आवश्यक है। तो इस पे सबको उठ के खुलकर बोलना चाहिए।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की ही टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर है रामशंकर यादव टिन्नू यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on an angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that's accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.

0: ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല, പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന പേരല്ല നിലവിൽ ലോക്ഭവനിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേര്.
1: The special intensive revision, the much debated special intensive revision of electoral rolls, is now underway across Telangana, with booth level officers carrying out door to door verification and distributing enumeration forms. While officials say the process is aimed at updating voter rolls ahead of the future elections, the exercise has sparked a political slugfest, with the AIMIM chief Asaduddin Owaisi hitting out at the BJP. Here's a report on all of what's unfolded so far. Take a look.
2: The special intensive revision of electoral rolls has picked up pace in Telangana. Booth level officers are carrying out door to door verification, distributing enumeration forms and verifying voter applications to ensure that the electoral database is updated ahead of future elections.
3: 50 kare abhi tak kal kit liye the main fir aaj se shuru kare aaj 50 houses pe hai.
4: कितने एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपने अभी तक दिए हैं और एक दिन में कितने फॉर्म्स दे सकते हैं?
3: कितने 100 फॉर्म्स दे सकते हैं?
5: अभी तो फर्स्ट डे है आज हमारा. फर्स्ट डे में अभी तक 50 से 60 फॉर्म हम लोग दिए. अभी ये कैसा है, फर्स्ट के बाद में जो है फिर रिटर्न लेना है फॉर्म्स.
2: The exercise involves linking current voter records with the 2002 electoral rolls and scrutiny of applications for correction of voter details, deletion of names and change of address. Officials are also verifying supporting documents and conducting field inquiries whenever required to ensure that only eligible voters are included in the electoral rolls.
6: Ghar ghar phir ke jo hai na ye log jo hai na mehnat karke jo hai na paama barabar de rahe hai, log pura samjha rahe aur acha baith ke samjha ke humko bol de rahe ke ye karna bol ke humko samjha rahe.
7: Bahut achhi tarah samjhaya gaya hai, hamara 160 mein hai जो कल परसों स्टार्ट करेंगे ये लोग, तो पार्ट वाइज जो डे वाइज जो डिवाइड करके ये लोग नंबर वाइज लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं लोग.
4: द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज बाय द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन इन तेलंगाना स्टेट एंड टुडे इज द सेकंड डे. On 25th June is when the process had started, and now is 26th June, where the BLOs and BLAs are right now visiting the households door to door and giving their enumerated printed forms to the residents here.
2: The exercise has triggered a political slugfest. In an exclusive conversation with India Today, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has criticized the exercise, saying it would be difficult for many voters to trace details from the 2002 electoral rolls.
8: Elector ko apne 2002 voter list ke details dikhna padega. Aap khud andaza lagaiye ke jo gareeb log hain, chahe especially musalman, dalit और दूसरे जो गरीब स्लम्स रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये.
2: Owaisi also slammed the BJP, saying that if passports, Aadhaar cards and birth certificates are not accepted as proof, people will soon need to hold BJP membership cards to be included.
8: Birth certificate proof नहीं है, passport proof नहीं है, आधार proof नहीं है, फिर क्या proof होगा बताइए. तो अब जाहिर है, अब 2030 तक जिसके पास जिस किसी के खुशकिस्मत के पास बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड होगा उसी को मानेंगे.
2: द बीजेपी हैज हिट बैक, क्वेश्चनिंग व्हाई द ऑपोजिशन इज वरीड अबाउट एसआईआर.
9: दैट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस, व्हाई ही शुड बी रियली वरीड अबाउट यू नो जस्ट एसआईआर. वी हैव वेरी क्लियरली मेंशन दैट The party, the Bharatiya Janata Party or Modi's government has nothing to do with the Election Commission of India. It's a constitutional authority which has been established much before Bharatiya Janata Party or Narendra Modi's government has come in that.
2: After door-to-door verification, the draft electoral rolls will be published on July 31st. A month's time will be given to file claims and objections, and final electoral rolls will then be published on October 1st. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
1: And now going back to the world of sports, turning our focus to Mumbai, where football players, Bandra residents and local representatives are protesting against the proposed conversion of 8,450 square meters of Neville D'Souza football ground in Bandra Reclamation into a convention and exhibition center. Now, the protesters are demanding that the ground retain its sports reservation and instead be upgraded with modern facilities for athletes and the community. Proposal recently cleared by the BMC's Improvement Committee has sparked concerns among footballers and residents who say that the ground is a crucial sporting space for the city. Opened in 2018, the Neville D'Souza Football Ground is among Mumbai's few dedicated football venues and has become a hub for thousands of aspiring players.
10: So I've been playing football here for many, many years. Ever since Cooperage became privatized, even still at that time, there used to be matches here. But ever since then, after that, we have been playing here. In fact, last year, I won a tournament here. So this ground holds a lot of memories. And especially for the younger girls on our team is who it breaks my heart for even more, because they are the ones who are going to get an opportunity because they are in that age group of 16 to 20. And those are very crucial years for them. And to be able to see this ground taken away for a reason like building a convention center is just, it's, you don't know how to justify it.
11: मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है. मैं मुंबई एक साल पहले आई थी और मैं तब से काफी रेगुलरली फुटबॉल खेल रही हूँ. हर महीने एटलीस्ट तीन चार मैचेस तो खेले ही हैं मैंने. एंड एज अ फुटबॉलर बहुत मेरा दिल टूट रहा है एक्चुअली कि हमारा जो एक स्पेस है मुंबई में जहाँ पे हम 11 अ साइड खेल सकते हैं, 11-11 खेल सकते हैं, वो भी टूटा जा रहा है. और वो भी मतलब ऐसे रीजन के लिए कि कन्वेंशन सेंटर बनाना है, ऐसा नहीं कि इसको रिस्टोर करना है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा करना है या कुछ. तो मुझे बुरा लग रहा है. हाँ,
12: ये लैंड जो है महाडा के पास है करंट स्टेटस में. आपकी जो लीज थी इस फुटबॉल ग्राउंड के लिए महाडा के साथ थी, ये लीज कब एक्सपायर हुई? आपने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया था और आपको कब इन्फॉर्म किया गया कि ये एग्जीबिशन सेंटर को दिया जा रहा है?
13: सो ये जो लीज है 2024 में एक्सपायर हो चुका है. फिर हम लोग ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी डाला है 2025 में भी, ऑल्सो वी हैव अप्लाइड. एंड उसके बाद कई हमको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये ग्राउंड पॉलिसी चेंज कर रहे हैं. और हम तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये पीजी रहना चाहिए एंड इट्स अ प्ले ग्राउंड. फुटबॉल बच्चे जो यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए तो इनके लिए रहना ही चाहिए एंड इट्स अ प्लेग्राउंड बेसिकली फॉर फुटबॉलर्स.
12: लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप लीजी हैं महाडा के. ये लीज पे था, लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है. तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या हुए? यानी कि आपको इंटीमेशन दिया गया कि आपको अब एविक्शन नोटिस आया है, आपको कैसे पता चल रहा है कि एग्जीबिशन सेंटर के लिए दे दिया गया?
13: हमको कहीं नोटिस नहीं मिला है हमें महाडा से ना बीएमसी से. हमको पता चला इम्प्रूवमेंट कमेटी का जब हियरिंग हुए या उनके मीटिंग्स होते थे तो वहां से हमको पता चला है.
12: Yourself a football player, there have been a debate. On one hand, there are technicalities, aspects of who owns the ground. My MMRDA gave it to Mahada, Mahada came to BMC for approval. On the other hand, there are sentiments and a lot of talent of football coming out from this ground. So how do you look at it?
6: I don't know about the other aspect because I know only about football. Because being a Mumbaikar, I think because of Mumbai football, I reached here. So before I was a professional football player, I played almost 11 years for Indian team. Now I'm a professional coach. So because of Mumbai football, I made my career. I think if football would have been not there, I don't know what I would have been there. So I'm here to support Mumbai football and young generation, because if this ground goes, there is no future for Mumbai football.
1: On that note, we are wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories right through the day. Thank you for watching. This is Shriya Kundu.
14: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
15: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
16: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ले लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: The donations meant for Ram Mandir siphoned. A symbol of faith for crores of Ram Bhakts, now Aastha of these devotees is shattered. Employees involved in counting and managing daily offerings allegedly stole lakhs of rupees. An SIT probe has led to multiple arrests and further investigation is underway. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. The SIT is probing deleted CCTV footage, weak accounting systems and possible involvement of more people. However, as further probe in the case is underway, police are raiding the residence of all the accused. Their family members are also being grilled.
1: मैं इस समय रामशंकर यादव उष्टिनु यादव और मनीष यादव जो चाचा भतीजे हैं इनके घर पर मौजूद हूं ये मनीष यादव का घर है ताला लगा है कोई नहीं है पुलिस की टीमें यहां पर हैं ये गली है पूरी इसी गली में ही मनीष यादव और टिनु यादव का घर है रामशंकर यादव टिनु यादव उनके घर पर भी और मनीष यादव के घर पर भी पूछताछ की जा रही है पुलिस से लिखा पढ़ी कर रही है दस्तावेज अपने तैयार कर रही है और
2: पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है राइट नाउ आई एम प्रेजेंट आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ अनुकल्प मिश्रा यू कैन सी इन द विजुअल्स देयर आर पुलिस ऑफिशियल्स आउटसाइड सम ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स आर इनसाइड questioning the family members and the sister and mother of Anukalp Mishra. Now remember, this is the same residence which was bought by Anukalp Mishra 2 years back for more than 40 lakh rupees and was reported yesterday by India Today. The impact is such that now the police has reached inside the premises and residence of Anukalp and right now the questioning is going on.
1: Ramashankar Mishra, jo आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ उनके परिजनों से उसकी भाभी बहन उनके पिता से पूछताछ की जा रही है ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे
2: A big pattern has emerged in the investigation of Ayodhya police in Ram Mandir donation theft matter as per the information The houses of the five accused from eight was in a distance of 100 to 200 meters. So now the police is also investigating on the angle that whether this conspiracy was hatched by them in a pre-planned manner. Right now, we are present just outside the residence of Lavkush Mishra. After the news of the raids, the family has fled the house. There is lock on the door and no one is inside present to in fact answer the questions of the police.
0: Opposition is demanding a Supreme Court monitored probe and even dissolution of the Ram Mandir Trust, calling it a betrayal of Aastha. On the other hand, Yogi government has promised strict action against the guilty.
3: Inki nigahein nation pe nahi hai, donation par hai. Jo log ye kehte the, nation first, unke liye lag raha hai ki donation first hai.
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे आपने तो अपना इतिहास देखे राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी आप ही की सरकार ने चलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने
0: As the political storm rages on, the biggest challenge of BJP will be restoring public faith ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. With Simar Chawla and Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
5: Now, as probe intensifies in the Ram Mandir donation theft case, it's India Today that accessed the exclusive CCTV footage that raises questions over whether the trust and the police were aware of the alleged theft 2 days before it came out in the public. As investigators carry out fresh raids on all eight accused, the trust has promised strict action against those responsible. Here's a report. Take a look.